0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर

0: भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
7: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
10: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
9: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
11: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hai, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
9: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor. Over the past 12 years, the Narendra Modi government has implemented several flagship schemes

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: टुंडू ब्यांगल तांग छपागुने सलकने इलू बांग सनाजत

0: Tak sen sarang ay tundu biang dal tang tupa unesal kane luri xanazats ngaji ya kash vani lenejut sanga to chuzo ruku chadu kasata dosto tsabe gestingne ladak sanang ana sul sanazat.
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

डॉन फ्लिमिलो का सता लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार निस्कने सनाजत लूर सुमकन अनजान यांगलु यांगस्टिकन कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर तंग मोहम्मद रफ़ी इसकने कसता जंजीर फिल्म लो उसनजत लूर सुमकन गुलशन बाफरा यंग लुयांग स्टिकन कल्याण जी आनंद जी।

कसता चरस फ्लेमिलो लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार निस्कने सनाजत लूर सुमकन आनंद बख्शी यंग लुयांग स्टिकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा

0: खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together Chief Ministers and Lieutenant Governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi says aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टे बेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 आज रात से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के नागरिकों के हित में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संदेश पर कहा कि वे भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को बेहद महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत कनाडा साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संदेश के जवाब में कहा कि भारत और इसराइल के बीच मित्रता आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगी। विदेश मंत्रालय ने कल ओमान के तट के पास भारत के वाणिज्यिक जहाज सिट्टे बेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के उप राजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 सदस्यों के लापता होने की खबर है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमलों की लगातार घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें बेहद चिंताजनक बताया है। इस बीच भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और शांति के लिए बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के संचालन की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब इन संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप दें। डॉक्टर जयशंकर ने बुल्गारिया के विदेश मंत्री विलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए सहयोग शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद 25% से अधिक की वृद्धि है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई महीने में बढ़कर 4.2% हो गई है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के बाद ये दर तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अप्रैल की तुलना में कीमतों में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि जैसे जैसे होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल की आपूर्ति सामान्य होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की करीवा में एक रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। यह कदम वैश्विक तेल संकट के बीच बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये संयंत्र जापान के उन कई परमाणु संयंत्रों में शामिल है जहां प्रयुक्त ईंधन के कूलिंग पूल लगभग भरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ संयंत्रों में अगले 5 वर्षों में क्षमता पूरी हो सकती है। वर्ष 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद जापान के 54 में से केवल 15 रिएक्टर ही फिर से शुरू किए जा सके हैं। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था और लगभग 1,60,000 लोग विस्थापित हुए थे। कनाडा की सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी उन्हें छूट मिल सकेगी। विधेयक में आत्महानि को बढ़ावा देने वाली, हिंसा या घृणा फैलाने वाली तस्वीरों जैसी हानिकारक सामग्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कनाडा में एक डिजिटल सुरक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ अब कनाडा भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत और ताजिकिस्तान ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात उन्होंने वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में उद्घाटन भाषण में कही। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मोहित यादव और ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार उपमंत्री नूरुद्दीन जोदा अहलुद्दीन ने की। श्रीलंका के लोक सुरक्षा मंत्री आनंद विजयपाला ने कल संसद में कहा कि पूर्व खुफिया सेवा प्रमुख सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुरेश सल्ले के खिलाफ 2019 में ईस्टर संडे पर हुए बम धमाकों से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। इनमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। विजयपाला ने आरोप लगाया कि सल्ले को हमलों की पूर्व जानकारी थी। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमरीका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और फीफा विश्व कप आज रात से शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi expresses gratitude to world leaders for their warm wishes and messages over becoming longest serving elected Prime Minister of India. India summons US charge d'affaires following attack on commercial vessel Settebello off Oman coast. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent. World's biggest football tournament 2026 FIFA World Cup begins tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to world leaders for their warm wishes and messages over becoming longest-serving elected Prime Minister of India. In his messages, Mr. Modi thanked Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. In a social media post, Mr. Modi thanked his Italian counterpart Giorgia Meloni for her warm wishes. In another post, the Prime Minister thanked Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for his warm wishes and kind words. He also thanked German Chancellor Friedrich Merz for his warm words. Meanwhile, US President Donald Trump has described Prime Minister Narendra Modi as a great one. In a social media post, President Trump said, Mr. Modi is a strong, healthy and wise man and will have many years of growth.

मेल बॉक्स शुरू हो गया है। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और बिना देर किए पहला गाना आपको सुनवा देती हूँ। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा की फरमाइश पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दिल का मेल बॉक्स आपका रिक्वेस्ट वाला शो है, यानी कि आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं हम तक और हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करते हैं। और रिक्वेस्ट जहां भेजना है, यानी अपनी पसंद के गानों की लिस्ट कहां भेजनी है, वो मैं आपको बता देती हूं। fmgoldairdelhi@gmail.com, fmgoldairdelhi@gmail.com पर।

कोई कोई फिल्म ऐसी होती है ना कि उसका एक एक गाना एक एक नगीने के बराबर होता है. ऐसी ये फिल्म है, ये रात फिर ना आएगी. और इतने खूबसूरत गाने हैं ना इसके, कोई भी गाना आप उठा के सुन ले. बल्कि उसका ना पूरा कैसेट मेरे पास तो हुआ करते थे जब कैसेट आया करते थे. तो इस तरह कई फिल्मों ऐसी थी जिनके पूरे पूरी एल्बम्स ना इतनी प्यारी होती थी कि आप बस लगा के और आराम से सुनते रहे उन्हें, सारा दिन आप सुन सकते हैं. खैर अभी हमारे पास सारा दिन नहीं है, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि है धरती फिल्म से, चिन्मय महतो, रेखा और शिवांश मंडल की फरमाइश पर.

0: महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल की पसंद पर आपने सुना कारवां फिल्म का ये गीत, और अब लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और बिना शो क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसे आप

सुन रहे हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू, और आप इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं ईमेल पर अपने मैसेजेस भेजकर। ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब आ रही है एक गजल जिसे जिसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान और इनके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने।

ये जो बिल्कुल सही डायलॉग्स हैं इस वक्त, क्योंकि गर्मी जिस तरह की है ना, उसमें वाकई में ऐसी ऐसी जलन होती है बॉडी के अंदर कि ऊपर से सूरज की आग बरसती है और नीचे से अगर आपके हाथ में पानी नहीं है तो बस हालत खराब है आपकी। तो इसी तरह के गाने आप हम तक भेज रहे हैं मौसम का मिजाज देखते हुए, लेकिन ठीक है, अच्छे मौसम की आस भी बरकरार रहनी चाहिए। तो जो अगला गाना है वो हम सुनना चाहा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने, और इनके साथ साथ जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस ने। ये गाना है चांदनी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में।

बिल्कुल, उम्र ऐसी ही बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है। और अब प्रोग्राम का वक्त भी यूं ही बीत जाता है और पता नहीं चलता है। आखिरी गाने का समय आ गया है, जो कि है सुरेश नारंग, आशा नारंग, सोनाली नारंग और सैयद मसरूर की पसंद पर ना खुदा फिल्म से। तो नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपसे मैं फिर से मिलती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदराबास, किशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Prime Minister Modi today said that farmers' welfare is among the government's top priorities and it is leaving no stone unturned to make their lives as easy as possible. In a series of social media posts, Mr. Modi said, "Farmers are the bedrock of the country's food security, nutrition and prosperity." The Prime Minister highlighted that initiatives such as the PM Kisan Samman Nidhi and the Crop Insurance Scheme are not only safeguarding farmers' incomes but also further strengthening the agriculture sector. Prime Minister Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace."
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent, and the task for both countries now is to reshape them into a more dynamic and forward-looking relationship. He said this after his meeting with his Bulgarian counterpart, Veleslava Petrova-Kumova, in Bulgaria. Dr. Jaishankar noted that their discussions had three dimensions, first being the bilateral cooperation between India and Bulgaria, second, partnership between India and the European Union, and lastly, about how stronger countries can work together for global stability and progress. The United States carried out a new round of military strikes on the Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Iranian media reported explosions in several locations including Bandar Abbas, Keshem Island, Minab and Sirik, while air defense systems were activated in other parts of the country. Reports also indicated naval confrontations near the Strait of Hormuz. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahi, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Tamil Nadu and Northeast India. The world's biggest football tournament, 2026 FIFA World Cup, begins today and will run through July 19th across the United States, Canada and Mexico. The tournament is the largest in World Cup history, featuring 48 teams compared with 32 teams in previous editions. The three host nations qualified automatically, while the remaining 45 teams earned their places through a two-year qualifying campaign. The competition will feature 12 groups of four teams. The top two teams from each group will automatically advance to the knockout stage. The eight best third place teams across all groups will also advance for a 32-team knockout stage. And that is the end of this news bulletin.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर शुरू हो गया है। मैं हूं आपके साथ नीतू, और आज एक ऐसी जगह की तस्वीर जहां घुमावदार सड़कों से आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिख जाएंगे। नया रंग रूप लिए झरने हैं, चमचमाती झील है। यहाँ आप ठंडी हवाओं के साथ साथ हरी भरी घाटियों में घूमने का मजा ले सकते हैं, और आपकी रोमांच की तलाश भी यहाँ आकर पूरी हो सकती है। ये है अरुणाचल प्रदेश का तवा।

माना जाता है कि तवांग का नाम तवांग मठ के नाम पर रखा गया कि मंतत्तियों के अनुसार जब मिराक लामा लोद्रे ग्यामसो मठ बनाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढ रहे थे तो उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था कि जहां वो ऐसा मठ बना सकें, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दिव्य शक्ति से प्रार्थना की और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनका घोड़ा गायब था। जब उसे खोजते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां उन्हें वो घोड़ा मिल गया और इसे दिव्य शक्ति का शुभ संकेत मानते हुए उन्होंने इस इलाके में रहने वाले मोनपा लोगों की मदद से यहां पर मठ बनाया जिसका नाम तवांग रखा, जिसका मतलब होता है घोड़े द्वारा चुना हुआ। तवांग में ता का अर्थ है घोड़ा और वांग का अर्थ है चुना हुआ। 10,000 फीट की ऊंचाई पर 17वीं शताब्दी में बना तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और इंडोनेशिया के बोरोबुदुर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है जो दूर से किसी किले जैसा दिखता है। आप इसका एरियल व्यू देखेंगे तो सफेद दीवारों और पीले रंग की छतों वाली ये मॉनेस्ट्री जो है वो आपको वाकई में

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप, और तस्वीर में बातें हो रही हैं तवांग की। तवांग जिले में पहाड़ियों और पर्वतों की पूरी श्रृंखला है, जिनकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट से लेकर 22500 फीट तक है। इस जिले का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गौरीचैन है। गौरीचैन पीक पर चढ़ना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। इस चोटी पर चढ़ने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के महीनों के दौरान होता है।

इसके अलावा एवरेस्ट जैसे एवरेस्ट जैसा ही एक शिखर है चोंग चोंगमा पर्वत शिखर, और शांगफू पहाड़ियों की विशाल श्रृंखला, वो भी इसी तवांग जिले में है। इन पहाड़ियों पर सिर्फ जंगली पहाड़ और घाटियों से होकर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ पर हर्बल और औषधीय पौधों के साथ साथ नीले चीड़ और ऑर्किड जैसी पेड़ों की कई प्रजातियां भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ का जो वातावरण है ना, इतना प्राकृतिक है कि वहां पर जंगली जानवर और पशु पक्षियों की भरमार है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ जानवर खुलकर विचरते हैं, क्योंकि तवांग में रहने वाले मोनपा जनजाति के लोग शिकार नहीं करते। बुद्ध में आस्था रखने वाले मोनपा जनजाति के जीवन का अभिन्न अंग है मेले और त्योहार, जो कि ज्यादातर कृषि और धर्म से जुड़े हुए होते हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं तवांग की। रोमांच की तलाश है तो तवांग में सबसे मशहूर है सेला पास, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। तवांग को ना ये शेष भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी है सेला पास, लेकिन सर्दियों में ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक सुरंग बनाई गई है जो गुवाहाटी से तवांग को जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग है। चीन भारत सीमा पर सैनिकों, हथियारों और मशीनरी को जल्दी से ले जाने में मदद करती है ये सुरंग। तवांग के पास एक ऐतिहासिक स्थल है जसवंतगढ़। 1962 के भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मारक का नाम उनके नाम पर रखा गया। यहाँ उनकी मूर्ति के अलावा भारत चीन युद्ध से संबंधित एक छोटा सा संग्रहालय है, और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक भी है। 1962 के भारत चीन युद्ध से ही संबंध रखता है बुमला पास। ये उन कुछ जगहों में से है जहां ये युद्ध लड़ा गया।

भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा बुमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए यहां तक जाने के लिए तवांग में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस और भारतीय सेना से एक स्पेशल परमिट लेना होता है। बुमला पास का इलाका चुनौतीपूर्ण है, उसमें तीखे मोड़ और उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, तो जब आप जाएं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा।

तवांग का जो बहुत सारे देखने लायक वहाँ पर जगह है, लेकिन अगर तवांग में आप झरनों के पानी को गिरते हुए देखना जाएं चाहें तो फिर वहाँ आप नूरानांग झरने की यात्रा कर सकते हैं, जिसे जंग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पानी कोई 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है। नूरानांग

नदी और नूरानांग जलप्रपात का नाम नूरा नाम की एक स्थानीय मोनपा लड़की के नाम पर रखा गया है, जिसे उस लड़की ने 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान महावीर चक्र से सम्मानित सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मदद की थी, लेकिन बाद में उस लड़की को चीनी सेना ने पकड़ लिया था। आपको अगर हकीकत फिल्म याद हो तो उसमें वही लड़की एक दिखाई गई है जिसका रोल वहां किया है, उसमें धर्मेंद्र के साथ है। पूरी फिल्म की जो कहानी है उसमें वो लड़की जो है नूरा नाम की लड़की, वो मेन कैरेक्टर है उस फिल्म में। तो अभी हकीकत की बात हमने की।

तवांग के मुख्य आकर्षणों में से एक है पेंगोंग टैंग सो झील। इसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि माधुरी दीक्षित की फिल्म कोयला के एक गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। ये झील अपने क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के लिए जानी जाती है। ये झील भी काफी ऊंचाई पर है, तो इसलिए जब भी आप जाएं तो अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, उसी तैयारी के साथ जाइएगा। वैसे तवांग में कायाकिंग और राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कामेंग नदी पर जा सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। ग्लेशियर झीलों से निकलती है ये नदी। तवांग क्षेत्र में बचे हुए जो अंतिम तिब्बती पुल हैं उन्हीं में से एक है चकजम ब्रिज, जो कि 15वीं शताब्दी में बना प्राचीन लोहे का पुल है, और इसे देखना आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसी चीजें जो अभी बची हुई है, जरूरी नहीं है कल भी बची हो, तो जो बचा हुआ है उसे तो देख लेना बनता है। और इस पुल के से होकर ना आप तवांगचू नदी को पार कर सकते हैं।

तवांग जाने का पीक सीजन है मार्च से जून तक। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहारों के कारण ना तवांग का जो माहौल है वो बहुत ही हैपनिंग सा हो जाता है। दिसंबर से फरवरी के दौरान मौसम ठंडा होता है और बर्फबारी भी होती है, इसलिए पीक सीजन की तुलना में इस दौरान भीड़ कम होती है। लेकिन इस दौरान आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तवांग पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा असम के तेजपुर में सलोनीबारी हवाई अड्डा है, जो तवांग से 317 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप गाड़ी लेकर तवांग पहुंच सकते हैं।

बनाने में माहिर हैं। वो प्राचीन काल से ही कपड़ा खुद बुनते आए हैं। वो भेड़ पालते हैं और उन्हीं की ऊन से कालीन बुनते हैं। कागज बनाने में भी मोनपा लोग जो हैं वो माहिर हैं। उनका कागज डेपने बॉटनिकल पेपरसिया नाम की झाड़ी की छाल से बनाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से शुगुशेंग कहा जाता है। उनके बनाए कागज गुणवत्ता के मामले में बहुत ऊंचे मानकों के कहे जाते हैं। मोनपा इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। थंका कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग है, जिसे तांका या टंका भी कहते हैं। तवांग में सभी कलाओं और शिल्प में थंका पेंटिंग्स का बहुत खास स्थान है। इसके माध्यम से बौद्ध दर्शन को समझाया जाता है। इसके अलावा बैम्बू क्राफ्ट, हैंड मेकिंग, शू मेकिंग, पॉटरी, धूप बत्ती बनाने में भी यहाँ के लोग माहिर हैं।

0: अलविदा तो कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे जाने का समय आ गया है। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में सुनते हैं समाचार।
1: Das ist eine FM Gold Sunset. Ngaje medium wave kilohertz chikstong ab chung ngsu miyana meters ngip gege chukep chi tang chuzur ku. Yan FM gyadan chik tang chuzur chi ge kang ngaje akash fani lene shwen chik tang in. Ngime chu tsot chungis tong to kasata chungis tang pet sak pa film lorik sanazat. In askola Mr. X in Bombay film ne ilubo. Kishore Kumar ne sanazat, Lulsomkan Anand Bakshi yang luyang srikan Lakshmikant Pyarelal.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं।

0: उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।

0: इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस।
1: ओह।

0: संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हां मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: दासिंग शराय एनसीईआरटी चिंतक सरकने डिग्री उमंग चिक्सों सुमगिया जी पसंद। आकाशवाणी लेने जुंजिकता इन

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, centre and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the centre and states will play a pivotal role in realising the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
3: Today, a new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
2: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sethubalo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected US missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigwaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a

जय हिंद। स्वागत है आप सभी फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के प्रोग्राम में। तो लीजिए सुनिए प्रोग्राम का ये पहला गाना दामिनी फिल्म से, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना दिल फिल्म से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में लीजिए सुनिए ये अगला गाना जीत फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना कुमार सानू की आवाज़ में, मिस्टर आशिक फिल्म से। गीतकार है इंदिवर और संगीतकार जतिन ललित।

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम के आखिर में लीजिए सुनिए ये गाना, बाजीगर फिल्म से अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में। गीतकार है गौहर कानपुरी और संगीतकार अनु मलिक।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। और आज रात मैक्सिको में शुरू होने वाले एक महीना तवील फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दा तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी में इजाफा करने और रोजगार के मौके पैदा करने के इकदाम पर गौर खोज किया जाएगा। तबादला ख्याल के दौरान इज्तिमाही तौर पर अमलावरी का खाका तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए हुक्मरानी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और साझेदारी को फाल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तआवुन पर मबनी वफाकी निज़ाम के जज्बे से रहनुमाई हासिल करते हुए मरकज और रियासतें भारत की तरक्की के सफर में तेज़ी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के मुश्तरक विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगी। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की, जिसमें उम्र, खित्ते, जिंस या समाजी व इक्तसादी पस मंज़र से क़त नज़र हर शहरी की फलाह व बहबूद और तरक्की पर जोर दिया गया है। गवर्निंग काउंसिल इस विजन को पाए तकमील तक पहुँचाने की हिकमत अमली और इसे मुल्क भर के शहरियों के लिए एक ठोस नतीजे में बदलने पर गौर करेगी। रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के आकाशवाणी अहाते में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के रामगढ़ में नसब 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। तकरीब में जयपुर के रुकन पार्लियामेंट मनोज शर्मा, प्रसार भारती चेयरमैन प्रसून जोशी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णव ने स्ट्रेटजिक एतबार से अहम बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरहदी खित्तों में मवासिलात को मुस्तहकम करने के तहत हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों का अहाता करने की बड़ी पहल आज राजस्थान में शुरू हुई है। जनाब वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से शुरू करते हुए मुल्क की पूरी सरहदी पट्टी को जामे कवरेज फराहम करने का मंसूबा है। हुकूमत ने इथेनॉल की आमेजिश वाले बाज अकसाम के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि इस कदम का मकसद भारत के इथेनॉल की आमेजिश के प्रोग्राम को मुस्तहकम करना है, ताकि दरामद किए जाने वाले खाम तेल पर इन्हिसार कम हो, कार्बन के अखराज में कमी आए और मुल्क में तैयार करदा इथेनॉल की मांग में इजाफा किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट

0: प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सदरनशीं सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी आबादी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज गुजरात में वडोदरा से भारत में तैयार की गई पहली एयरबस C-295 की पहली आजमाइशी परवाज पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाजों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का भी इजहार होता है। शहरी आबादी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फिजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदीब और कंसल्टेंसी फर्म काउंसलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीक़ेकार के ज़रिए बदलाव लाते हुए वक़ार और खिदमात की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी नुमाया करता है कि जनाब मोदी ज़्यादा बाअसर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त ज़रूरत थी। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोब्गे ने आज कौमी रोज़नामे में एक मजमून लिखा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई। अपने मजमून में भूटान के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। जनाब टोब्गे ने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वज़ीर-ए-आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब टोब्गे ने जोर देकर कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में गहरे होते दोतरफा ताल्लुकात के दौरान भारत भूटान का सबसे करीब तरीन दोस्त और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी बना रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ फिल्म साज भारती राजा के इंतकाल पर आज अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारती राजा सिनेमा की दुनिया की कद्दावर शख्सियत थे जिनके काम ने तमिल सिनेमा को बदल कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिल्म साज भारती राजा की जानिब से पेश की गई देही जिंदगी को खूब सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारती राजा के अफराद खानदान और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया है। हुकूमत ने उस जाली वीडियो की तर्दीद की है जिसमें भारतीय फिजाइया के तैयारे के पाकिस्तान सरहद के करीब तबाह होने का दावा किया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की हकायक की जांच करने वाली इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और इस वीडियो को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की जानिब से फैलाया जा रहा है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाज़ों समेत हर तरह के जहाज़ों के लिए आबनाए हुरमुज़ के बंद होने का ऐलान किया है, जबकि अमरीका की मरकज़ी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ बदस्तूर आबनाए हुरमुज़ से गुजर रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कल आबनाए हुरमुज़ में दो बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात मेक्सिको सिटी में तारीखी स्टेडियो अजटेका के मकाम पर शुरू हो रहा है और जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं जबकि सबका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। इस टूर्नामेंट में चार चार टीमों के 12 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से चोटी की दो टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएंगी। इस टूर्नामेंट में ग्रुप मरहले में 72 मैचों समेत मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे जो कि एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड का फाइनल 19 जुलाई को होगा। स्पोर्ट डेस्क से शगुन चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इस दौरान फीफा आलमी कप में पहला मैच ग्रुप ए में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ مرکز نے ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی، اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے اپنا ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of center and states key to realizing Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP Prakash Chikwaraik resigns from Rajya Sabha. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. Iran announces closure of Strait of Hormuz following US strikes. And sports fans across the globe await month-long football spectacle as FIFA World Cup kicks off in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. He said, from farming and startups to science and innovation, Nari Shakti is contributing across the domains. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Vikasit Bharat at 2047. The meeting has brought together chief ministers and lieutenant governors from across the country to discuss the inclusive human development framework anchored around four core pillars. These are foundational human capital and future-ready skills, productive employment, entrepreneurship and decentralized growth, health, nutrition and well-being, and equity and dignity for all. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw today virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Rajasthan's Jaisalmer district during a program held at the Akashwani premises in Jaipur. With this addition, the total number of FM transmitters in the state has risen to 39. The new transmitter will provide radio coverage within an 80 kilometer radius in border areas, providing people access to a wide range of information, educational content and entertainment programs. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnaw said, special arrangements are being developed to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across the country's border regions from Kashmir to Kutch, with new FM transmitters and broadcasting infrastructure being set up. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir. Today, a new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward. Mr. Vaishnav called for transforming the overall framework of Prasar Bharati, stressing the need for a digital first and hyper-local approach to keep radio relevant in the technology era. He also underlined the importance of connecting local artists and artisans with broadcasting platforms. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashwani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Union Finance Ministry announced that petrol blended with 22%, 25%, 27% and 30% ethanol have been exempted from central excise duty. The ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today expressed happiness over the maiden test flight of the first Made in India Airbus C-295 from Vadodara in Gujarat. In a social media post, Mr. Naidu said this is more than just an aircraft taking to the skies. It also reflects the country's growing capabilities in aerospace manufacturing. The Civil Aviation Minister also congratulated Airbus, Tata Advanced Systems, the Indian Air Force and all the engineers, technicians and workers on the achievement. Trinamool Congress MP Prakash Chekbarayik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to his Singaporean counterpart Lawrence Wong, New Zealand counterpart Christopher Luxon, former Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Guyana President Dr. Irfan Ali for their wishes and messages on him becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. In a series of social media posts, Mr. Modi said he looks forward to working closely with his Singaporean counterpart to further comprehensive strategic partnership of both nations and take India-Singapore ties to new heights. Thanking Prime Minister Luxon for the wishes, Mr. Modi said the India-New Zealand Free Trade Agreement marks an important step forward in the partnership of both countries. The Central Bureau of Investigation, CBI, has successfully secured the deportation of Ganesh Balasokale from Thailand to India in connection with a cyber crime fraud case. The deportation was carried out in close coordination with the Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs and the Embassy of India in Thailand. According to the CBI, the accused allegedly ran a cyber financial fraud network by recruiting unsuspecting individuals into the scam. Victims were lured with offers of online part-time jobs and persuaded to make monetary deposits as investments. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at five premises in Hyderabad, Telangana, in connection with the alleged transport scam involving the Andhra Pradesh State Beverages Corporation Limited. According to ED,

0: Bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण. उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है. राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया. सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया. भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की. अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की. और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ. समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है. नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले. बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है. इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास. बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं. किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया. इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया.
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में. हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधें. जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें. लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करे। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
3: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
4: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर

0: ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: Нац углаар сужиг нөлөөнд бүс гягаар таар гэнэг сатам сикас кост ёот кан ITBP кёртон гүнтан май Bharat лейтүн ми гүнтан ням пон жалтад зачи се дигрим ётэно Виксит Bharat Vibrant Village Program in Nanglogha Gyagare Khak Susune Yunuguni Zidejik Ladakh Si Satsam Se Gamyul Kuni Stapskor La Khyong Ste Yutanuk Stapskor Ijak Nispe Jaga Khongish Changtang Yuljong Si Satsam Se Gamyul Kuni Nanga Mimang Si Mitse Putangs Guni Tsirka Guntang Gamyuli Sherik Lukhrol Guni Skor La Rgyu Ischonjik Tanok Inatuzla Khongish Nase Mimang Skuntang Zungdil La Thakkor Lakshmo Zache Si Lazgul Rigang Shulinjik Tanok Shilon Narendra Modi during Ergelsa New Delhi Shiji Ni Jugdansi Sherik Sokhananga Niti Ayogi Governing Council It Sosting Chukshik Pe Sorso Zanjik Tanok Dilani Sospenanga Gagar Shilong Istung Jipchu Abdun Sukpa Yergeshan Ergel Kapchi Gur Chukchi Si Shmigul Borte Yotkan Nangjin Shisoksi Mimang Sangma Kunsumi Yerges Zachesi Tablingun Skorla Trosdur Zadaninok Sospenanga Gelka Sose Lonpo Chenmogun Ujung Azde Shiskyong Tang Shiskyong Jun Baguntang Niti Ayogi Tipatang Tuzmiguntang Delot Kakush Bagun Tusinjik Tanok Akashwani Chokner Jitose Pandefia, Charles Ganshan, Zatkan Gunlar, Siva Pulches Tang Kong Charles Zatkan Gun Mimans Kunlamun, Chukches Kachikitsula, Mixali Degrim Sanchez La Pulinjik Tanok, Diringi Karananga, Nistom Shurstarubi, Padmashiri Zimstas Namskan, Dr. Jogesh Duris, Siri Culture Las Karananga, Charles Ganshan, Zatkan Guni Kachik Sanchez La Pulin.
1: आशाओं का रेशमी धागा बुनते हुए डॉक्टर जोगेश देवरी पद्मश्री 2026 एक सेरीकल्चरिस्ट जिसने घरेलू रेशमी कीड़ों के पालन को एक समृद्ध उद्योग में बदला शुरू में उन्होंने अपनी माता को रेशम काटकर कठिनाइयों से जीवन यापन करते हुए देखा तब उन्हें लगा कि प्राकृतिक अनिश्चितता किसानों को गरीब और असुरक्षित बनाती है
2: बचपन से ही मैंने अपनी माँ को एरी रेशम के कीड़े पालते देखा है तभी से मेरी रुचि जागी और मुझे हमेशा लगा कि यदि मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस क्षेत्र में कुछ सार्थक करने की कोशिश करूँगा
1: उन्होंने इसे बदलने की ठानी एक एक कदम बढ़ाते हुए कठोर कम देखभाल और अधिक उपज वाले एरी रेशम कीट को बढ़ावा दिया पर एक बाधा बनी रही केसरू और अरंडी के पत्ते की मौसमी उपलब्धता डॉक्टर देवरी ने टैपियोका के पत्तों का विकल्प अपनाया जिससे साल भर उत्पादन सुनिश्चित हुआ वे मूलभूत खेती पर ही नहीं रुके उन्होंने हस्तचालित चरखों को मैकेनिकल मशीनों से बदला और कोकराझार में इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क की स्थापना द्वारा आधुनिक मशीनों को बढ़ावा दिया
0: Zanskar Yuljong Senanga Drugs Tonsar Gesin Yot Kanguni Seltaps Pinches Iskorla Trosdur Zaches La Paduminanga Zonspon Omkar Rajendre Ujuk Senanga Police Tang Chosok Sose Tuzmiguntangyampo Sospajik Botazatenok Sospenanga Tuzmigunis Zanskar Yuljong Senanga Skorians Patang Lapaguni Transkar Gesin Tang Zonanga Drugs Tonsar Gesin Yot Kan Iskorla Shada Zadinjik E Tonsi Seltas Pinches La Zong Yung Sir Stradikwa Police Tang Chisok Si Sospat Sangme Rostel tangyam po chhalas zachi ji takchat kun lena jatano Central Electricity Authority Thuzmi MG Gokle Alchinanga yotkan singemo basgo chulogoi charji sona se exist kor jatano itus NHPC power station e general manager Sanjay Kumar Rai sospe laskung si khakur pagunis NHPC sona sose galla sir rulin kan gunis kor gun ishara jatano stingness kujab gokles Sonasi engineers tang jan lachet paguntang yampo ijal tadzate, NHPC larsir gun manga circa demung yampo shulches tang delte, kongra in spasperigang salazate nok. Zanskari Government Degree College Chokne, Sindhu Central University tang zungdela, loptukunla, thorim yuntan lobjong zachis skorla, hagos belches tang yampo ijal tadi, degrim jik atalik zate nok, itus Sindhu Central University Professor Deskyong Namgyal tang, Assistant Professor Dr. Tashitunduk Gunis, College Loptugunla, Thurimyantan Lobjong Zachesla, Sindhu Central University Nanga, Lobsan Sosananga, Admission Salinyot Kantang, Scholarship Tang Internship Pantos Salinyot Kanguni Skorla, Hagos Pelazatenok. During Neparla FIFA World Cup Nistong Jurzaruk and Gozuk Shachezeno, Hadilani Football World Cup Nanga, Team Jipchu Jabgia Diz Kaklanjitano, Yang Talo, United States, Canada Tang, Mexico, Sanke Zundela, Tonker Churuginanga, Tadik Azanjitano, FIFA World Cup Gozuk Dandur, Mexico City Nanga, Lochox Africa Tang, Mexico Niske Parlar Sachezeno. Le Luntin Kangu de Ladak Sis Nasulguns Hato Jusotorku.

0: रेरिया की लोश गश गा थोबा नोयाले
1: अंतो
0: द अन्य योजना जरकान बा राशन कार्ड इना मी चिक यो डोश गा यो डोल दुन यो डो किलो सुमचु सोंगा थोबा नोले देना क्यों दा दा नपा पे रोस्ते सुमचु सोंगा थोबा नोयाले इविना ता तेओ मानते दक्सा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंगा ता एलएफएसएस एंड लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम जरकान जे शुरू चोस्ता नोयाले तेओ गिरमु चो ग्यात नपा ने गप चो सोशे नो ते विना इजुगी यंग किलो शंगा शंगा डस थोबा नोक मगर ते पेमेंट का नो याले गिरमो जो गया दिका
1: केमो तो शेन नो
0: दा केमो सब्सिडी नो याले गिरमो शंग ये सब्सिडी वो गवर्नमेंट गा ता यूटी लदा खे खुते नो याले गिरमो शंगा खुर पसंता ते ना गा ता चामा न्यू ना ते विका ने 5 रुपए सब्सिडी वो गा ता यूटी लदा खे खुर नो याले जजना रिन चेंज छेन तु दोले गोमा गिचु सरगो ते गा जे याले इन डस पो तसा गिरमो जो गया ना इजुक 50 पैसा तो शेयो गरीब कुन पता गरीब कुन लास्ट साल ते बिहार ने चमशी लास्ट राजस्थान ने मंगपो यो तो गया लास्ट उत्तराखंड तेना जगह लास्ट चौक मांगपो लेबर से गया ते लेबर गुन जैसे खोन पूरा फैमिली थी ते आउं ई का यो स्टेन का तो ई का गाय वन नेशन वन राशन कार्ड तह दिया लेंगे जे राशन बोतांग स्थान तमशिक स्कीम ना ते ना मी मी नंग 5 के जी उठवा नो गया ले दस नंग पक पे सो पसंता तंग आता लदास पर लेबर जी गोदना ई का ने लेबर जी क्लास वाला ई का ने जम्मू अचेन दिल्ली अचेन करू छेन खोन ला ई स्कीम बो अवेल चो नंग थप चेन गया ले करू यो नंग मगर ते वो नो की ता तकसंग आता इनो पा चंता इन जगह मांपो इंटरनेट डुलम नेट डुलम जो गया ले दे मुझे ते इश्यू सों पसंग आजे ऑफलाइन तांग नोक तेर जगह उनला नेट पुल दे मां मडुल पसंग जगह मांपो आता इ कनेक्टिविटी दे मुझे एक चुस्ते डुलम जो गया ले बस आता इ वन नेशन वन राशन कार्ड इना ले ने राशन कार्ड पो इन ना ले पा जी इना आ इ कन्यांग नेट पोल देमो अडुल गोसानो आ कन्यांग डुल गोसानो तेने खोनला आस्किम बो बियान गयाले ता ऑफलाइन नि राशन कार्ड चिक इन्ना चंता ने इंडो या वारिस फास्तान तिजुक तो जगह मंग पोत पसिंगे लालो पा इन्ना खोन दिल्ली असों ते राशन फिंजना खोन लथोब मनोले जजना नेट पो कनेक्टिविटी में तनो मजे जगह नीस होत के गले ऑनलाइन ना पार्शियल ऑफलाइन जेंजिना राशन तानो जगह नीस नेले सो पा चंतांग ना फार फ्लंग एरियाज गुन ना जे पार्शियल ऑफलाइन जेंजिना याले स्टोर कीपर बोते ने नेटवर्क एरिया ना योंस ते खोनी कनेक्ट चोस्ते तानो मशीन बोस्टिंग ने याले सो पा ते गुनला वन नेशन वन राशन कार्ड ना थोब मिनु गले जिसे कारगिल पा जिकले अल्लाह चोयो ना कारगिल ना ते जगह का याले नेट पो डुलत ना ले अंडुलत ना खोन लथोब नो याले नेट पो डुला मेतना खोनी एरिया ना थरिंग थरिंग जगह नो पा जैसे बरसो जिना थरिंग जगह जगह कारगिल ना दु पा याले जगह मंगपो या जंस्कार ने इजुगा जगह मंगपे ना नेट डुला मेत पा याले ते जगह ने ले आयो ना ले फिन जेना ते उला प्रॉब्लम छारुले इंटरेस्टेड ना इंटरेस्टेड निस के ना या थोप थोबा नो वन नेशन वन राशन कार्ड तहत
1: कसा ओलेले यंग चिक चिक मैम ने तांगा तांगा चमशिकता यलबाचन गोले राशन थोबेनी उत्कजुक शियोते स्कोला चिकता जूस पा तियांग टिवा चिक चिक तो पर ngal langata khara thobe halale
0: kasa
1: tene yang ta khaji school che se fa samaj yang thobe bin ta daksa nga ta ina logic ni sing na phala khwe ya tang chi suk ngam ngun cha nang ya met kan chen ju kule kule ja den ji nok pa te gun san gun chi ju ja dang ka por gyu te tene san kan lan gel da mang asal po chen ta i gun ge ga jung i chok ni korang yang thap chu se thak cha chi in ro te o mang asal po chen tene nga ta yang nap stok the chung gun men kan chen no
0: ता यो इसुक शिनो वाले खारा वो दक्षता सुपालांगा जे बीपीएल राशन कार्ड पाउंडला राशन कार्ड चीगी का किलो चीक दे का तांत पीनी है यंचा ननी 2025 सुपालांगा जे तांग सेन मार इस कीम बो तालो क्लोज डाउन सोंते दुगे आले तालो मा बीपीएल पाउंडलांग खारा थोप जे मानो गयाले ननी सुपालांगा जे तांग स्पीनी आले नास पर साता बाकी समर इनो समर बो सब्सिडी दक्षता गवर्नमेंट डिमांड थेन ते मिरु गयाले समर बीका समर बो सों पसंता दक्षता गाता है समर बो 140 रुपए लीटर लतु क्या ले कसम पसंता गाता ही ngal lang tapik sik news te bor te pinyale yo dunchu dongyat la in yale son pasang mi namskan do nang ajela ka taksang te o banchi yo te yale nubre nang ne yot khalse nang tapik sik yo leang tapik sik yo te yale son pasang dunchu dongyat po ta mi ula rin bo mangpo chorte ngi amru goma tanga ta ger mo sumchu rik jipchu ri ga liter yo chane ta mane changme kher ta no yale pasang ta तासँग त इन्भाइरोमेन्टको क्लिन चो चेसलाई समर याङ मार्छन् त्यही त्यही बिना यसो प्रब्लम छ रुख जस्तो त्यही विचार त्यहाँ गभर्मेन्ट समर बिल्कुल कम चुस्तो दुख
1: क्याले
0: त्यही सब्सिडी वहाँ खतम चुस्तो दुख लेकिन हाँ तँग त 140 लाख न्युनसम्म त्यो उहाँ चाहिँ ख्युस त्यही फुल्चेन गइहाले उहाँ लगायोले कसा दुन्चु दुनियात पायो उहाँ चाहिँ लगाइहाले अगर मिगुनी नम्स नकातो उहाँ चाहिँ 2022 सिनाङ्योस् पिनियाले एकदम ऋण बोझ दुन्चु दुनियात गुर्पाले यजुक कानी गिर्म 40 रुपियाँ सोसी काने एकदम 78 लाख खेसिहाले बसँग त्यही मिगुनीमा नि पुष्प रक्स त्यही दक्षमा नि नम्सामी रुखले त्यसै चाहिँ उहाँ चाहिँ लगायो
1: प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना जुन्जिक काबुर चन्द एलपिजी सिलिन्डर सप्लाई चिलो कनेक्सन ऋण मेटा खुङ थोप चुक छ काबुर खुङ लक्ष्मो क्लिन इन्भाइरोमेन्ट जिनाङ पाले त्यही नै खुङ गुल्न दक्षङ दापो सब्सिडी याङ पेनै लक्स थोप चाहिँ अरू चाम त्यही पेने भो खुङ चाम सिक थोपा दोङले यहाँ माहारिक थोपा नङ पेने याङ गुनासँग यहाँ डन्डेक चोक्सियो क्या चित क्या
0: कसा त यसो गर्नु पाइहाल्यो घुमा तङ त कनेक्सन भयो खोल्न फ्री त आउनु पाइहाल्यो सासपासँग त नेक्स्ट इजु कि रिफिल जाने जिसँग त आइहाले काङ जाने 200 रुपियाँ चोसिक त सब्सिडी थोपात न खोल्न 500 रुपियाँ चोसिक सब्सिडी थोपा नयाँ
1: त्यही नै अहिले याङ जुग पिका म्यामले तङ त दक्षी प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना जोग्छ दक्षी प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना हुन् निर्वाचन सेना दोन्तङ क्योस लाग्न त खर्जी जाच थोप्चास पो क्योस पो काक्स पो छेन त्यो गुनि फियाङ त जस्तो ग्यार जुङ छोक नि फन्दे छर्जी झिङ्गिनु त्यही त अल्ला रक्स रोप सिक दुख्पाङ त न अल्ला सिक मेत या यु मेत आ मेत ngajang thop go shin jer kan bo te chok si nga ta thuksam sal kan gu la ngira chi mo lin ngira inne na chaklas lo mong po jing na ja den te chok isu mo mong po jung ni do hala le ngang thop go sin khong thop go sin nga ji khimche la thop ngi ming bo thop go sin si jing mo thop go sin ani thop go te chang ma la jin ji ta juwa phulin yo no sin os pa o ka bo la no ka os kim bo nang jin hala le te me ta jin ba ngang os pan khong os pan skimi khong gai len ji go den no pa te skol la jing ngira chi mo lin ji
0: ka sa juk ma ka nga te no ju che ra ya चले इ स्किम बो खोराले नताई थोंतनो पा ग्यागार जुन न नताम मालेप कान जिक सोंग मेत क्याले सोपा रैक पिकर्स अमिलले ते कुडा दुखिसा खिमसाल दुकान हालले खिमसा बिनै दुकान खोन कागुनला थोप मेत काउ रबरी शुगु चोक्सिना दुवा ते गुनला काउला छेलदार सुमी जान थोबा मे देले बीपीएल बोते उफियानो अंतदान ए वाई राशन कार्ड काउ कता अंतोदय अन्य योजना जते राशन बो ते चोस मिगुनि फियाइ नगाले ता ngatang la das pon izu ko ngatang za no pasim zang po in ngatang dikpa chorkan in ngatang chos pa in ja no patang zang halale chi sama jus na ta jukma vika bpl chok shik po ngatang i skim bo ngatang nen go shera merak chame sang la ta ngatang ra na nangkub ne sam go se ale chi cho go shera ngaje te za chang chos pin ki का का राशन कार्ड मंगपो ता कंप्लेन लेपते छुपो गुनी राशन कार्ड खेदु गाड़ी ना योजते इजुगी राशन गुन खेदु ते वहाँ गाड़ी टकपो टकपो लाख निशू पा लाख निशूर सा पे गाड़ी ना यो दुख सानो ते वहाँ आता रहा संभा तंग चेनो कि गा उस पा इन डाका मन डाक सर खान बहुमे का इन वन हाला यहाँ चले सो पते का नहीं गाजे पासपोर्ट साइज की नक्शा जारते हो गाजे स्टोर गुनी ना या कि कौन ने कौन बीपीएल बीपीएल दुख से पा तेने यूल पे मांग पे जे दुखो आओ छुपो ते वो छुपो इन जे दुख ta nga ta nge je rang rang rang rago ma ta nge sam gos samara ki is kim bo sui phe ino nga za go shes bo ospa raga me rak sam kan bo ya le ma san tia zene iyo gharib se gharib mi phe ino go ya ya chan le hala le so pa san ta nga ta la das pa san ma nge te wang nge juin samara ki nge je agar semba ne sam te nge je surrender cho se iyo nge fya man rak nge sang tu nge gaungi na iyo yot nge kim ches bao nge sang izu go yongo kam chan jiyot kwa kamay met nge sang ta kwa top go she rak sam te nge je saje chan chan na ek tangay transfer rang cho no macho na ka to verification ina thore le ba ching na age ja ki iyo free ration jing nok pa government iya le ngilda po nge je kane loks te nenche siyang chan ches se no ya le iyo ina ya cha zena free ration jing nga ta ay chon la izu kshay mi je ta ama no थोड़े गवर्नमेंट लापता छह चीन दक्षा ये नल ना जूस पिन एक्शन हर जगह ने नें दुख ngatang jung center la patash kyote du ki ngatang gari chandu ngatang khampa chandu ngatang GST kang du hati pa du business choruk chi sama pata du yale so pasang आगे जाके ये भी हो सकता है कि गाता ई धुनकान बो छमा लोक से डबल लिखा गाता तंग जाने मकास पे छेना समर गेले देफ यांगा गाता दक्षा समझो गाता ची समतना

संकलन गेस्ला ए फिल्म लोगन आकाशवाणी लेने संचेसला फलंजिक तंगिन फिल्म लो डिक्ट मिनांगा कसता रोजा फिल्म लो मिन मिने ने सनजत पी के मिश्र समझत कने लोआ यंग स्टिगजत कन ए आर रहमान।

दक्षिणी शिरंगे कयामत से कयामत तक फिल्म लो अलकयाकनिक तंग उदित नारायण नि सनजत लूर सोम का निनपिन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयांग स्टिक का निनपिन आनंद मिलिंद कैसे था फिल्म लो डिक्रमिस तिंग जुपे का क्या कहना फिल्म लो कविता कृष्ण मूर्ति तंग हरिहरन नि संचिसला पलिन मजरी सोमजत कनिलुआ यंग स्टिक अजत कन राजेश रोशन।

0: Doksan Yeşilay filmelere xenedet. Gaji Akash Vani Lene Shwenjiktain. Pido Chutsot Shngadang Skarmang Apchungang Achaduk. Kasetan gaji Deringi Dikrim Nyespatang Thore Se Dikrim Gune Skor Gun Sanchis La Pulin. Dikrim Nyespina Daksa Chutsot Tugeka Akash Vani Dilleni Hindi Tang Angrezi Nangan Achul. Tuktang Skarmang Shwika Jingpe Sungska Dikrim Sanchis La Pulin. E Dikrim Enanga Skon La Rangshini Khoryuk Nang Stunte Sabade Chakla Sachis Samshik Khakchanin Ibutang Delte Tamdil. Yangina Dikrim Inangas Kujabs Tsirang Utuptang Yampo Tivatilin Sanajadin. Dikrim Pulkan Kunchuk Rikzin Dikrim Ekodik Zatkan Sonamang Chuk. Tuktang Skarma Jibchika Makmi Kyoktung Guni Pia Dikrim Inanga Filme Lurik Sanchis Lapulin. Ladakh Sinang Natsultang Delchat Sanajadin Chutsot Urtuntang Skarma Chungika. Rudantang Pedika Tsevang Sampele Selkani Lurik Sanchis Lapalin. Akashwani Srinagar ni Rudantang Skirma Jibchika Urdinang Natsultang Tapsara. Dering Sani Chutsot Rgyadika Pomoguni Dikrim Pomi Jixtin Sanchis Lapalin. Inang Sngonla Tamdil Yangana Dikrim Inang Skujabs Tsering Chospiltang Yampo Tivatilin Jik Sanajadin. Dikrim Pulkan Gun Tsering Chondroltang Jigmetangdol Dikrimi Godik Zetkan Tsering Chorol. Jigatang Pedika Mohammed Musi Selkani Purki Lurik Sanchez Lapalin. Yang Dikrim Nispis Ting Jukpeka Dering Tsani Chotsot Rgudang Pedika Putpe Dikrim Kangri Nurbu Sanajadin. Ina Asmonla Gyalvai Shinurbi Sungsha Denanga Yarab Sangpo Zachis Sethoga Tamdil. Yana Dikrim Inas Kujabs Tenzin Sering Tang Yampo Tivatilan Sanajadin. Dikrim Pulkan Gun Sechoy Palmo Tang Tseong Gyalsan. Dikrim Ekodik Zatkan Lopsang Namgyal. Kasetang aji thore se dikrim tangpo tang nispe skor gun sanajat. Dikrim tangpe nanga thore se ngadu chutsot rdontang skarma sumchu sopni se ka roshni. Rdontang skarma sumchu sopdoni ka ngaji dikrim gune skor gun. Tatpanang shin dikrim sanchez la pulin chutsot rdontang skarma jibji ka. Inang asmon la tsering dorje pulkani sungur. Fatima banu tang thopa guni pulkani nate sharif yang tatpanang shin dikrim is ting jukpe ka. Deshket palmo tang thopa guni pulkani choslu sanchez la pulin. Rgyadika Akashwani Dilli ni Samachar Prabhatang Morning News. Chuzor Gyatang Pedika Gyalchas Bakula Rinpoche Skutse Zatnamika Dikrim Sanchez Lapalin, Dikrim Pulkan Padmashiri Skujabs Ngurup Namgil. Yang Testing ni Ladakh Silurigang Sanchez Lapalin. Rguika Ladakh Sinangana Tsulyang Rgudang Skarmash Ngeka Lasne Skorla Kheptaks. Chuzor Rgudang Skarmash Chuyika Sonam Svalzestang Topaguni Selkani Lurik Sanchez Lapalin. Rgudang Pedika Filme Lurik. Akashwani Dilli ni Shrika FM Gold Dikrim Gun. Nyeme Chutso Chukni Sika Film Melorik. NCERT Chindak Zatkani Dikrim Umangi Khaak. Stong Chik Nang Sumgya Shngapa Sanazadin Chutso Chukni Stang Pedika. Chige Ka Akashwani Dilli ni Hindi Tang Angrezi Nang Natsul. Makmi Kyok Tung Guni Pia Dikrim Inang Film Melorik Sanchez Lapulin Chutso Chik Tang Skarmash Chuyika. Nye Stang Pedika Sngol La Puntsok Dorje Selkani Lu Yang Testing Ne. Tsering Urup Tang Topa Guni Selkani Lurik Sanchez Lapulin. Yang Dikrim Tangpis Ting Jukpeka Thore Ngime Chutsot Ngistang Skarma Ngap Chungayka Ladakh Sinangan Natsul Sanajadin. Kasitang Aji Thore Se Dikrim Ngispe Skor Gun Shuna Dikrim Ngispe Nga Thore Pito Chutsot Shngeka Ladakh Sinangan Natsul. Shngadang Skarma Shngeka Ngejarani Telephone Gyutte Ngagazat Kani Filmelui Dikrim Hello Farmaish Sanchez Lapalin. Dikrim Pulkan Stanzin Deliks. Shngadang Skarma Ngap Chungayka Ngaji Dikrim Guni Skor Gun. Akashwani Dilli ni Tugeka Hindi Tang Angrezi Nangan Natsul. Tuktang Skarmash Chuyika Gamil Piskatlun Dikrim Sanchez Lapalin, Dikrim Pulkan Kunchuk Tashi, Dikrim Ekodik Zatkan Sonamanchuk. Tuktang Skarmash Jibchuyika Makmi Kyoktong Gunipia Dikrim Inanga Filme Lurik Sanchez Lapalin. Ladakh Sinang Natsul Tang Delchat Sanazadin Chutsot Duntang Skarmash Chuyika, Duntang Pedika Tundu Pangmutang Tsiring Dulkari Selkani Lurik Sanchez Lapalin. Akashwani Srinagar ni Duntang Skarmash Jibchuyika Urdinang Natsul Tang Tapsara. Thoritsani Chutsor Gyatika Junuguni Pia Dikrim Sanchez Lapal. Dikrim Pulkan Gun Tsering Lamo Tang Dolkar Lamo. Dikrim Ekodik Zatkan Lopsang Namgyal. Shgyatang Pedika Puntsok Spalduni Selkani Lurik Sanchez Lapal. Yang Dikrim Nispis Ting Jukpika Thoritsani Chutsot Rgudang Pedika Tsering Urup Tang Tsering Angchuk Selkani Shum Lurik Sanchez Lapal. Kasa Igunin Pin Ngaji Diringi Dikrim Nispatang Thorese Dikrim Guni Skor Gun. Naja Akashwani Lene Shwinchiktain Pidoy Chutso Tuk Chaduk. Kaseta Akashwani Dilene Skola Hindi Yang Testing Ne Angrezi Nangana Chul Sanaja.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी से टिबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 284.9 meters यानी 1053 kHz और FM 101.1 MHz पर हम आकाशवाणी के लिए केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में ताल फिल्म से गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार ए आर रहमान।

आइए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और श्री कुमार की आवाज़ों में, दिल से फिल्म से। इस गीत के बोल हैं ग्रिश पुथनचेरी के और इसे संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

फौज भाव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए सरफरोश फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे रंगीला फिल्म से गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे महबूब और संगीतकार थे ए आर रहमान। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लय केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए चाइना गेट फिल्म से। अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाज़ों में समीर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है अनु मलिक ने।

0: ngaji akashvani lene shwenjik tain kaseta tusot zapegis tengne ladakh sanana chul yang tes tengne delchat sanazat
1: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: Ibu Akashwani le in Kasatayang Chindolma na Natsul Sanajat Shishkyong Jonba Vike Sakse ne Niti Ayoge Governing Council le Theng Chukshik Pe Chokspe na nga Thusajat Tenok Sojungi Salyang Silonpo Raksha Khazde Ladakh Se Zizkor Tang Changtang Zongi Samchang Se Gamyu Le Mulmi Kuntang Nyampo Yaldum Zatche Senok Poshan Bi Pradai Bi Jongdar Khak Nispa Tang Lopthu Kulna Tangyung Mirik Silonko Lopok Salin Yodkan La Shish Pande Tang Tribal Fande Tongi Gishkajip Tatenok, Kasatana Sulkunjip Saltanga Po Sanatat. Shishkyon Jonba Vike Saksen, Niti Ayoge Governing Council, Tostang Chukshik Pena to Zatenok, Kong is Itox Penanga, Ladakujung as Denanga, Scientific, Innovative Tang, Cost Effective Ildaneka, Lops Kunlaglena Kyongste, Yuljo Sinanga, Tanji Yarga, Sajing Badge, Shunskyop Tang, Tepitis Kasping Chess in Alas Shulin Yotkan Escola, Shadatenok. Sojung Salian Silon Poraksha Kazde, Ladak Ziskor Ladiring Leleptenok. Ziskor Ring the Sojung Lonpe, Vixit Barat Village, Degree Minanga, Tukaklinkan, Mai Barat Youth Club, Tangsanasi, Junoguntang Yampo, Jalzum Zatjesinok, Torres Sojung Lonpe, Rong, Himia Gamuli Zisko Zate, Gamulpa, Nazde Tuzmi Zurba Guntang, Junoguntang Yampo Jalzum Zate, Yuljong Sina Yargas Escola, Sungro Zatjesinok. Then that's all the Sojung Lonpe, Indo Tibetan Border Police. Tongguntang Yapo, Jalum Zate, Yuli Samsam Shunshopinanga, Rintang Chani Kakchen Mozatin Yotkani Toga, Mozin Zadin Jikta, Siva Pulchesinok, Vixit Barat Village Program in Nanga, Samsam Segamul, Himia, Chumatang, Hanle, Korzok, Chumur, Kuyultang, Yuma Gam Yulguni, Yulmi Guntusa Jesinok. Ladakh Sinanga, Potion Bi Parai Bi, Jongdar Kaknispa, Taliktang. Tangyung Mirik Silon Kungi Chokne Lopto Kuna Lopok Salin Yotkan Gunla Skerjip Stis Tang Tribal Li Tongik Nidhi Maligi Skerjip Zatenok Sospe Nanga Jung Tiri Tongigis Lopok Gun Goste Tang Chis Gun Chisal Nangsal Yong Chesepia Stis Tang Tribal Pandilas Kunga Pantok Lenkan Lopto Yontani Stones Guni Jipcho Zaches Tang Shugu Chatsang Tangyapo Yong Chesetoka Gaspel Tenok Ina Sospe Nanga Kungis Mimans Gunla Pantos Mashok Top Chuk Chesla Janang Ujung Azde Gelka Guni Tapjus Gunla, Zictor Lenches Lankas Pilatsatenok. Sojung Skelden in Lonpon Nitin Gadkari, Junil de Ces Guishaga, Zujileka, Gangung Puches is at Guiscap, Ladar Sena, Skelden Tangel de Chajina Zorshigi kept at Zatenok. Kongis Ladar Sena Aldani Zoyar Gastang Chispo, Shiloni Antang Peka Borti in Kaniscola Shada Zadinjik, Chajigun Soma Gun kept at Zats.
1: नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं लेह में टू लेन प्योर शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा लेह में ट्रैफिक सहल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेह में टू लेन प्योर शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 पर उसकी मैं घोषणा करता हूं इसका डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा 17000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा उसके साथ-साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा यह बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूं जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है 8.5 किलोमीटर की इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ इसका डीपीआर भी बनाने में अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे लेह से पिंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी
0: Shem Zongspun Kunzes Dolme Kalse Zinda Chugis Belopte Newsletter Edition Tangpo Sheshche Odang Sidamka Tula Zateno. It was SP Ajaz Malik, RNB Assistant Executive Engineer Anwar Khantang, Janyang Laskun Sosis Ponbogunang, Tusa Zateno. Zadgus Kapsunsha Salinjik Tang Zongspun Kunzes and Motang SP Ajaz Malik Niske, Somri Gista Layer Gastang Chestang Silches DJC Luxo Layer Gastang Chesika, Lop Tukula Shesalteno, Yang Kongiske, Lop Tukula Lopzang. po lop shes tang, shi chok si na shol ngan mikser li ra zi che sir ma ne tuk za si lop zgan chok si ne shang za ches tang zem te duk che la kada lam stun za te nok. Shngime na nga tuto gun las ke wo kak ches tang anti rebi sir man tu ni las gul jik tuto gyuspe las kungi shul te nok. Jag zgya de las guli na nga shang ki ngib gya gya chu keru gas ke wo kak ste nok yang anti rebi sir man tu ngun tang ste nok. Ina tsul gu na ka shwani le na san che la pulin jik tang in.
2: Regalion Storix Tenas Kang Lenanga, Nistong Nishur Saruk Sabduni Academic Session Ifia, MCISM NEET Gute, Bachelor of Sovarikpa, Medicine and Surgery Nanga, Undergraduate Course Ifia, Admission Lenches La Restos Pagunikane, Online Snyanju Lenin Jikta Enok, Snyanju Pulches Sistans, Melzit Ses Nishur Sangane, Junit Ses Nishur Sanga Borte Yotenok, Restos Pagunla, Junit Ses Jongane Sumchu Sukpa, Intrinsic Yuk Sifia, Advanced Preparatory Coaching Ang Borches Enok, Yanjulel Ses Churgi Jaga, Intrinsic Yuk Kun Chaches Enok, Tugdo Yutkan Restos Paguni, Juni Chesni Shursanga Tsukpa, www.cihts.ac.in Nikashkyote, online registration Zat Tupchesino, Jipsalifia Sabutanga Yutkan, Soa Rikpa Laskunzlash Kyonyan Chesino.
0: Canada nanga thugu gunglo churuk lonkha na sangchunga gulna social media kolche la gakja tangche la timchar jung otho jatyo tenok i timchar kyote noches tangjis pa chane content thugu gunla ta che la gakja tangche se tenok i thoga Canada nanga digital safety commission chukche senok Canada dang nyapo Australia Brazil ta Indonesia kuni nanga gungle dani ka chi chos pelam kolche la gakja sal tenok thugu gunla yontal la rok sal che la Himalayan children ni chokni ngulrok salte utkan gun koste tangche se degree mjik tarik jate no e degree me nanga nalanda dharma center tipa geshe sultim tharches tipa jonba jik me takpa himalayan children e coordinator in chendolkar himalayan women and children e tipa kunjis dolma tang managing coordinator kaljang chukun thu sa jate no sechukal konpe nanga skyoba jiksten sumgon ni gongjok chotbul gyap gyar kupe sishuk jatu bjp la da tipa tashi galchan thu sa jate no skyoba jiksten sumgon gongzo gejat ko nanga gonpa su se gintun tatmus pagun tu zat zat deno itu sung sha salin jik tang ku jep ta shi gelsan khachui ladak se chu si tok ne shirik norkal gun shkyo te bochis potsam shi khatsa ni tes ko la tu zat zat deno shudul tribe tang shudul ka se chungla zat kan gun la sojung e public procurement policy for micro and small enterprises order ngipya chugin se ko la go tang chi city grim jik tarik zat deno itu ladak se nasa so so ni chungla zat kan gun tukak len teno SCST Habi Yanlare Kakurpas Ponbo Surya Bushani Hagos Pelkan Iskola Shadatzat.
3: STs मैं मेजरली STs ही ले रहा हूं तो उनको हम अवेयर कर सके क्या-क्या स्कीम्स हमारी हैं इसके अलावा जो जेम से हमारे स्पीकर थे हमारे साथ बैंक्स आए थे SBI और बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ ही CPSE से तीन FCI पावर ग्रिड और HPCL इन्होंने अपनी डिटेल प्रेजेंटेशन दी लोगों को बताया कि वो जो प्रोक्योरमेंट है वो किस तरह से करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्या-क्या वो प्रोक्योर करते हैं STSC कैटेगरी की एंटरप्रेन्योर्स तो ये कुल मिला के काफी अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा इसमें 100 से ऊपर की हमारी गैदरिंग थी बडिंग और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स की एसएसटीज की हमारा प्रोग्राम ये हमने कराया कल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेन है जो की एक इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है लेन में मैं यही बोलूंगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम था जितने में मुझे उम्मीद है कि जितने यहाँ पे सॉल्व हो गए थे वो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आगे 100 से आगे मल्टीप्लाई करके 400-500 लोगों तक पहुंचा है यही हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की हम लोगों ने यहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट कुछ रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे उद्यम के जैम के काउंटर बनाए थे हमारे यहाँ पे स्पेशली दो एग्जिस्टिंग हमारी फिशरीज थे जिन्होंने सब्सिडी SCLCSS के अंडर ले रखी है वो आए थे कारगिल से है एक ही ले से है
0: Zujileka Gengung Puche se Zatkwe Nanga Skelden Lonpo Nitin Gadkiri Jammu Khachuli Shishkangjon Bamanu Sinha Lonpo Chenma Omar Abdullah Tang Zhenang Skundun Gunla BJP Ladakh Etipa Tashi Galsan Khachui Kasujwa Zatenok Viksit Bharat Vibrant Village Program Nang Loga Changthang Zongi Samsam Se Kamulpa Gunla Shirik Tang Yontani Tokne tabs ko talik jate no nyuma tang durbuk jong se jinda chukis jinda gyat pe lopta khang loptu kuni pala salang se dan durji nyume jinda chukis pe lopta khang na nga honi jak sum ne pala talik jate no kan bo thon te no sting ju gi jaga nyume jinda chukis pe lopte lopchi jig me dorjes kundun so tang nyume zrp punchok top dan sibes kun kundoni chula tusa jate nok sojungi cyberi jixpa kuni ka lapton jixpel tyote no I lapton ne nanga artificial intelligence kolte thinskal chokan guni cyberi jixpa gun ping nyot kan skola na lon kungsi indian cyber क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज शंस पुलते शंस कुलते होते नो सिंगजु पिकना चुल खक्चा गोनिया लंचिक सना जात रिस्कियों जन पर वी के सक्से ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल थिंक चुक्षिक पे छोक्स पे नात थुसा जाते नो सोजुंग इस चलंग से लोन पो रक्षा खजदे लद्दाख से जिसकोर तंग चंतंग जो इन सम सम से गमुली युनमी कुंदंग या पो जलम चचे से नो पोशन भी पढ़ाई भी जोंदर खक निस्पा तंग लोपटो कुंला तंग यू मेरिक से लोन खुंग लोपोक सालिन युद्ध कन ला स्चिस फंदे तंग ट्राइबली फंदे टोंग इस क्या जिस जाते नो इन्ना न तंग या पो आकाशवाणी ले नेता न सुल्तुन कसता दिलचस्प नजात
4: Natanga Ranjin is Grumang Pushik Skuskisitula Topsteno, Yang Inangne, Grumang Pushik, Kola Jiktang, Metkan Chaches, Yang Grumang Pushik, Janjik Kolnang, Sarches Metkan, Yangna, Yang Yang Kol Topches Yoteno, Yang Ir Gugunang, Rangra and Nasinanga, Sosua Topches Layoteno. Natang Ladakh Sinang Rgyu Mangpochik Yotenok Yang Inangne Mangpochik Kola Chiktang Charches Chan Yang Mangpochik Cham Kolnang Charches Metbaenok Da Ngatang E Nangstakspo Tebo Salgos Rgyu Kagun Charte Metkan Chaches Kun Rang Chikpo Kolte Dikches Manpa Rang E Yongches Chani Gyudzin Gune Piang Shiste Borches La Samba Salgos Spetna Sabo Sajing Batke Chochesla Lu Mangpushikne Lut Dangste Stontok Ming Tupa Choste Jinga Dotchukste Inpin Ngata Pa Mesbogune Di Sabo Kangparchik Chisir Gyushikangeno Innang Budkane Lo Chutak Sumji Ringsla Lo Gyatagena Sa Dotchukkanbo Pagbunante Gongto Duste Jingbo Dotmedla Gyushchuks Matsatpe Yule Skilskilla Bago Tsoks Dus Yang Kabe Dubdasla Saji Tukskanbo Ngata Ziksinino Yang Budkane Chutak Gune Nanga Te Gyudzin Gune Pagbunante Yongota Spelts Innang darse gyutsin guni te jingun skangces la pene dosong juenjik tanganok. Yang te sakyat po batu bajige tsulla loks de topces manok. Ibo spetikcik justein tsarces jane rgyu po tuksamjik salte kola tsarces la. Da ngatang rgyu cikcik tsamshik kol nang tsarces metbaenok. Kabo maa sang maa kola tsatna koryugika nushkal tangamanok spetika nime shuks. Tsamjik kolnang dikste inok yang daksa nimi shuksika lok shuks rooftop juste charji gyute top topa joches matsatpe tsung topche sang yote inok. Street light, chu tonmo joches, nang tonmo joches, dontang skol nyanches, tulkur natsoks shul topches matsatpe motokolo natsokshik nimi shuksikang dul topa yote inok. Yang ngatang tsamjiki nimi shukskun jen tapskuni tsapsla kolna Koryuk gyala tang sangma lushes matsatpe gyunur shitapsang chachasenok. Yang nimi shukse rgyubo ngataan pia skushkes chenmujige tsulla topsdenok. Di pia ngataan rangzini rgyu tsarchese jikspa chan gunika nangstak zate kola zaches yang yangyang kol nyanches chane rgyu gun tsamtup maa kola zatkos. Aga shwanilene ta delche ton.
5: Ngaji Akashwani Lene Shrinjik Tangin.

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: Dr. Hijray Muhammad Musa Selkani Purkiluric Senatats, Gashi Akashwani Lene Shwinjiktine Sanishutsot Rietanskar Majipjan Chatu Kaseta Akashwani Delini Samachar Santhea News at 9 Tang Urdinana Tsulgun Senatsat
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: तंत्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।